0: मेहते वस एकाई बांगे हमें क्यों है
1: मन दान्ने
0: मैं मानते हो बेया हासे आटा मनु मनु देवल सिद्ध बना दे किया ला को मुना थमुबीम बनबीम वलीन पिरुनो आपे जीवित कतावे एक एक विधे हैंगीम एक एक थाल आटा हित ऐतुलन आपे नो हितन रीत में कटा एली बहन वेला अवतमाई में मंदारम रात्रिया इति मटे हितना दो बेंगहान ना වෙන්වලා ගියපු එයා ආයෙත් මුණ ගැහුණත් ඔයාට මොනවද කියන්න තියන්නේ කියලා. එයා ආයෙත් හමුණත් මොකද කියන්නේ? 0715 95 95 95 එන්න.

कभी ना कहना अलविदा, किसी दास समुगनी में न पवसन, मगे उदासन का मगे रात्रि का मगे दाहवल का हम मोहत कम मगे मवी सरी सरन मतु आत्मा गाने मगे मवाना कभी ना कहना अलविदा।